0: खुशी होती है हमारे बुजुर्गों के जैसे हैं
1: जी जी।
0: और बिल्कुल दाशाह साहब ने जो कहा ना कि आप जो है ना वो ब्लैकमेल करते हैं अपने तल्लुकात हमेशा याद कर,
1: अगर पॉजिटिव बंदा ब्लैकमेलिंग करे तो वो अच्छी है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए।
0: पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ब्लैकमेलिंग तो ब्लैकमेलिंग ही
1: है। जिस तरह किसी ने कहा था कि डिग्री डिग्री होती है, जाए जाए लिए
0: जाए। जिसका हमारे माँ बाप भी करते होते हैं वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग,
1: इमोशनल ब्लैकमेल।
0: तो मेरा मतलब तो बयान है कि
1: नहीं, मैं समझता हूँ शाह साहब का ये बड़ा वाकई प्यार है, ये दिली तौर पर मैं एडमायर करता हूँ कि ये जिस वक्त मैंने इनको जनाब रिक्वेस्ट की इन्होंने आमीन कहा, और ये मैं समझ आई एम वेरी वेरी थैंकफुल।
0: मोहब्बत है और इतने अच्छे इंसान है, हमको बचपन से इनको जानते
1: जी। शाह साहब अभी क्या हमारे देखने और सुनने वालों को जनाब पेश करेंगे?
2: असल में माशाल्लाह इतनी प्यारी गाड़ी में बैठ के आया हूँ मैं, और उसका जो एसी था ना उसने मेरे गले को एकदम
1: ये इसीलिए काफी रखी है आपके लिए चाहे मिली नगमा अगर रिक्वेस्ट की है रजा साहब ने, एक मिली नगमा उसके बाद फिर आगे देखते हैं।

0: माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात। अच्छा शाह साहब, ये 14 अगस्त भी गुजरा है, अभी ये पिछले महीने सितंबर अभी शुरू हो चुका है, तो इसमें भी यहाँ भी काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं, तो आपके पास में शायद टाइम नहीं आया
1: मुझे आप। जी बिल्कुल, मुझे दो जगह से दावत आई थी, से भी और इधर चौधरी जो हम
0: लिया साहब। अच्छा,
1: मैंने हमें भी भरी थी लेकिन मेरी

0: अचानक आँख का प्रेशर हो गया था, तो उसकी वजह से फिर मैं उधर नहीं जा सका था, माजत कर दी।
1: लेकिन देखें इस दफा भी ये 14 अगस्त के हवाले से काफ़ी तंजीमात जो यहाँ हैं उन्होंने प्रोग्राम किए, बल्कि उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंगो फेस्टिवल जो हमारा समर सीज़न जब शुरू होता है पाकिस्तान से ये सौगात जो होती है हमारी आमों की, तो ये मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने प्रोग्राम किए और उसमें म्यूज़िकल भी था, तो आप भी शायद सोशल मीडिया पे देखते होंगे काफ़ी तादाद में यहाँ की फैमिली अपने बच्चों के साथ जाती रही है, और ये मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा ट्रेंड शुरू हो चुका है कि लोग अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ यहाँ जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये हमारे फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, ये हम मनाते हैं, इसकी अहमियत इतनी है। अच्छा शाह साहब, वक्त के साथ साथ मौसीकी में जिद्दत पैदा हो रही है, यानी अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक आम बंदा भी जो कुछ भी नहीं सीखा होता उसके उसके अंदर थोड़ा सुर होता है, थोड़ा बहुत वो सहारा लेता है ट्रैक का या म्यूज़िक का या कोई इस तरह के, तो वो जनाब एक रिकॉर्डिंग करवाता है, तो रिकॉर्डिंग के बाद अगर वो गाना हिट हो गया तो वो जनाब अपने आप को फनकार बन,
0: इसमें कोई शक नहीं। आजकल ये जो बड़ा शॉर्टकट आ गया ना
1: जी जी,
0: पता है अब मैं जैसे हारमोनियम के साथ हम बैठे हुए हैं, अगर इस तरह वो चार पांच जो म्यूजिशियन होंगे कितना मुश्किल होता है ये अरेंजमेंट करना
1: जी जी,
0: तो लाइव गाना कुछ हो रहा है लेकिन वो कुछ हो रहा है, लेकिन
1: अच्छा।
0: ये बहुत सहूलत है आजकल।
1: अच्छा आप कैसे डिफरेंस करते हैं लाइव म्यूजिक में और ट्रैक पे गाना? ट्रैक पे मुश्किल होता है जो ट्रैक चलता है और उस पे
0: ट्रैक पे भी मुश्किल होता है, लाइव अच्छा। में भी मुश्किल होता है
1: अच्छा।
0: क्योंकि लाइव का होता है बिल्कुल खुला गाना, नहीं एक चीज को आप उसको बारी बारी
1: अच्छा।
0: उसमें इम्प्रोवाइजेशन करेंगे
1: अच्छा।
0: उसमें अपनी फीलिंग डालेंगे
1: अच्छा।
0: और जो अपना ट्रैक बने होते हैं वो होते हैं बिल्कुल यानी फिक्स होता है, उसमें भी गले की वैरायटी आवाज़ की वैरायटी का होना
1: अच्छा।
0: बड़ा जरूरी है कि जो बंदा गाए बिल्कुल सही सुर में भी आए और जो अल्फाज हैं उनकी अदायगी भी अच्छी हो
1: जी जी। अच्छा लाइव में तो ये होता है शायद, पता नहीं मैं इस पर ठीक हूँ, कि लाइव में आपको मदद मिल सकती है, मदद मिल जाती है, यानी जो बजाने वाले होते हैं साजिंदे उसमें अगर आप नीचे ऊपर
0: कुछ फन भी अगर दिखाना चाहें उसमें थोड़ा
1: वो भी आप कर सकते हैं,
0: वो भी उसमें पॉसिबिलिटी होती
1: है, और दूसरा ये कि अगर ऊपर नीचे हो गया तो वो कवर
0: हो जाता है,
1: और लेकिन ट्रैक में आपको ध्यान रखना पड़ता है आप बिल्कुल, क्योंकि वो जहाँ शुरू होना है जहाँ ख़त्म होना है इस तरह। अच्छा तो आप क्या समझते हैं कि म्यूज़िक के साथ इंसाफ हो रहा है इस वक्त?
0: हाँ बस जो भी
1: चाहे वो क्लासिकल है चाहे वो नीम क्लासिकल
0: है कि हर
1: अच्छा।
0: यानी वक्त बदलता है
1: अच्छा।
0: अब देखें ना अगर हम इस चीज़ को अगर कहीं और हम जरा निकाय दौड़ाएं पाकिस्तान के मजाज के पाकिस्तान के माहौल में, कभी ये देखा था आपने कि हर दीन हर मज़हब में औरतों की रिस्पेक्ट है, बच्चों की रिस्पेक्ट है, हमारे दीन ने हमें इजाज़त देता कि हम बुजुर्गों पे हाथ उठाएं, औरतों की बेहुदती करें। अब जिस माशरे में ये चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे मौसीकी का माहौल या मजाज, पता है रात को बैठना मिलके लोगों ने गांव में अपना अपने बुजुर्गों के साथ बातें सुनना करना, कोई सैफल मलूक गा रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, अब वो चीज़ें तो तकरीबन ख़त्म होती जा रही हैं। जब भी आप ये जो सोशल मीडिया की आप बात करें, जब भी आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या हो रहा है
1: अच्छा,
0: कितना ज़ुल्म हो रहा है।
1: अच्छा
0: तो अल्लाह पाक
1: सैफल मलूक का जिक्र आया तो वो क्या आप कोई सुनाना चाहेंगे मियाँ साहब का या सैफल मलूक कोई कलाम?
0: चले कोई वो भी सुन लेते हैं, वो भी हो जाता है,
1: ये सुनाए और उसके बाद फिर जी
0: पहले बाऊ साहब को ना थोड़ा
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाए।

0: माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह शाह साहब। रोंगटे महसूस होता है, ये
1: कलाम तो बड़ा ऊंचा था लेकिन बस नहीं, वो नहीं, क्या बात, वहाँ लग गई।
0: लेकिन क्या बात है जी, फिर भी ये इसमें तो इतनी चाशनी और प्यार और अकीदत होती है कि ये जिस तरीके से भी परफॉर्म किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें बड़ी मतलब लज्जत होती है। अच्छा शाह साहब, म्यूज़िक के हवाले से कोई कलाम वगैरह आप कंपोज करते रहते हैं या किए हैं कोई माजी में, तो उनमें से कोई अगर कोई आप सुनाना चाहे चाहे वो
1: ये बिल्कुल बेशुमार गजलें
0: ठीक है
1: मैंने अपनी कंपोजिशन अच्छा है, बहुत अपना जब कभी शौक था मेहनत करते थे तो
0: ठीक है चलें,
1: बल्कि ऐसे भी हुआ एक एक राग में तीन तीन भी मैंने किए।
0: अच्छा,
1: यानी मुख्तलिफ शक्लें लेकिन वो राग
0: उधर आमद होती है उस वक्त था ऐसे ही।
1: चलें ये सामने एक मेरी गजल आ गई है, ये इसको मैं इत्तफाक से जिनका मैं ये कलाम गा रहा हूँ मुर्तजा बरलास, उनके उनके यहाँ बैठे हुए थे, दो गज़लें उन्होंने मुझे दी गाने के लिए, एक ये वाली थी आँख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह, और एक थी वो नींद भी तेरे बिना ऐसे सजा लगती है, वो कहीं मैं ना कहीं वो आज मिसप्लेस हो गई, तो ये गज़ल मैं गा रहा हूँ। और इत्तफाक की बात है उधर वो अपना जो बहुत बड़े शायर अकील, वो क्या नाम था जी, नहीं वो बड़े बड़े शिफाई अकील छुफाई कतील छुफाई, वो भी उधर बैठे हुए थे तो उनको उनको तो ये मैं असल में गला रखना कुछ हो गया

0: क्या बात है। अच्छा शाह साहब, पाकिस्तान में अभी ये पता नहीं आपका इत्तेफाक हुआ है, ये पाकिस्तानी आइडल एक सीज़न 2 शुरू हुआ है,
1: जी।
0: तो इसमें मैं तो ये वाकई बड़ा हैरान हुआ। तो इसमें एक फ़ीमेल हमारी बनी है पाकिस्तानी आइडल, हीरा कैसर जिसका
1: अच्छा
0: नाम है,
1: जी।
0: और उसका जब बैकग्राउंड मैंने देखा या सुना तो मैं तो हैरान रह गया कि उसका खामोद एक उसकी अजाम की दुकान है,
1: माशाल्लाह।
0: लेकिन उनके घर में ये वो उससे पूछते हैं कि ये आपका कोई उस्ताद है या कोई इस तरह का, तो वो कह रही थी कि मेरे वाले साहब बस वो सुनते थे, वो भी म्यूज़िक वो भी बाकायदा नहीं करते, और मैं भी जब कोई गाती थी ना तो वो मुझे दुरुस्त करते थे,
1: हौसला अफजाई करते।
0: हौसला अफजाई भी करते थे और कहते थे इस यहाँ इस तरह इस तरह। लेकिन ये जो इस वक्त आइडल, पाकिस्तानी आइडल मैं अटैच रहा हूँ, देखता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म कभी कभी होते हैं। इससे पहले पहले सीज़न में पाकिस्तानी आइडल एक बना था हमारा मंडी बावल दीन का, जमात बेग, उससे मैंने प्रोग्राम भी किया उसके साथ
1: अच्छा
0: रेडियो पाक लिंक पे।
1: जी।
0: तो ये मैं जब उसको सुनता हूँ ना या देखता हूँ, वो यानी पक्के सही राग, वो जैसे
1: माशाल्लाह
0: कहते हैं ना वो
1: जी।
0: अलाप या वो पलटे देना
1: सही
0: आवाज़ को,
1: रहा
0: यकीन
1: माशाल्लाह।
0: करें अगर आपका इत्तेफाक हो ना तो इसका उसका एक
1: नहीं,
0: दो
1: बहुत
0: गाना
1: अच्छे।
0: उसने ये
1: अच्छा
0: फाइनल में ना,
1: जी।
0: एक तो जिंदगी तमाशा बनी और
1: अच्छा
0: एक
1: अच्छा
0: जिंदलिए हुंदे मगरूल है,
1: हाँ
0: यकीन करो इसमें वो उसने शाह साहब ऐसे पलटे मारे,
1: सुभान
0: पता नहीं रजा साहब का इत्तेफाक हुआ है, और इस वक्त वो जनाब जाहिर है
1: माशाल्लाह।
0: पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में बड़ी मतलब है मशहूर है, बाहर भी लोग उसको देखते हैं। अच्छा तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जो दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है अताई, एक होता है टाड़ी टाड़ी टाड़ी या टाड़ी, इन दोनों में ज़रा फ़र्क बता दें हमारे देखने और सुनने वालों को और मुझे भी पता चल
1: ये
0: जाए।
1: देखे जी, हम दोनों अताई बैठे हुए हैं।
0: अच्छा यानी जिसको जिनको अता होता है।
1: नहीं, अताई हाँ जी। नहीं, इनका ये भी आप कर लें कि एक एक वो होते हैं कि जो जिनका वो फैमिली में ये चीज़ें आ रही हैं,
0: बैकग्राउंड से
1: जैसे जैसे मसलन इतने बड़े घराने हो गए,
0: गाने पटियाला घराना
1: ग्वालियर
0: या
1: लुधियाना
0: वो पता
1: शाम
0: नहीं शाम
1: चुरासी,
0: चुरासी, हाँ
1: तो ये उनमें तो ये चीज़ें हैं ना कि वो उनका
0: तो
1: वो
0: वो
1: आ
0: क्या
1: रही है।
0: कहलाते हैं, वो टाड़ी कहते
1: नहीं
0: हैं।
1: नहीं यानी कि वही होता है कि इसमें यही होता है कि उनको यही कहते हैं कि जो सही प्रोफेशनल,
0: अच्छा
1: जो यानी ये एक पंजाबी का लफ्ज़ जो उनका
0: अच्छा
1: इस्तेमाल होता है,
0: अच्छा
1: तो लिखने
0: नहीं
1: लिखने
0: वो
1: होता है।
0: कहते हैं ना
1: हाँ
0: कि यार सुनने
1: वो
0: वाला
1: एक
0: देखना
1: अताई है,
0: ये
1: कटाई
0: ताई,
1: है
0: हाँ
1: अपना।
0: टाई,
1: अताई से
0: अच्छा
1: मुराद के जो मसलन बाहर से आया है ना,
0: अच्छा
1: जैसे इस फन का जिसे शौक लगा।
0: अच्छा
1: अब मैं जैसे नात पढ़नी शुरू की या जो
0: अच्छा
1: भी है उससे, उसके में फिर आवाज़ अच्छी थी तो मैं कवाली में आया,
0: अच्छा
1: फिर मौसीकी में, फिर ये
0: ठीक है,
1: चीज़ें कुछ थोड़ा सोचा।
0: मतलब आप अताई में आते
1: हाँ जी,
0: हैं।
1: उनके
0: अच्छा
1: उनके चीज़ें जो है घर वाली होती है ना,
0: अच्छा
1: घर में उन्होंने वो चीज़ें जैसे शाम
0: सुनता
1: चुरासी,
0: है बंदा,
1: तो
0: अच्छा
1: उनको वो ऐसे मिलती हैं
0: तो
1: चीज़ें।
0: टाड़ी कौन होती
1: अब
0: है,
1: यही कहते हैं कि जो सही प्रोफेशनल वगैरह
0: प्रोफेशनल
1: जिनको
0: होते
1: कहते
0: हैं।
1: हैं,
0: अच्छा
1: जो
0: अच्छा ठीक है,
1: जो जो कहते हैं कि हम ही।
0: लेकिन आप क्या समझते हैं ज़ाती तौर पर, क्या आप राय देना चाहेंगे
1: नहीं
0: कि ये फ़न जो है, ये म्यूज़िक जो है, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से, या जैसे
1: बेशक
0: कहा जाता है कि कोई भी आर्टिस्ट या फनकार वो पैदा होता है लेकिन वक़्त उसको पॉलिश करता है उस फ़न में।
1: इसमें मैं
0: जी
1: आपको यूँ यानी यूँ मैं बयान करता हूँ, सुर और लय दो दो दो चीज़ें हैं जिस सिर्फ कुदरत की तरफ से आती हैं। सुर को हम तरन्नम भी कहते हैं,
0: ठीक है
1: इतने प्यारी किरत करते हैं, नात पढ़ते हैं,
0: जी
1: वो जो तरन्नम जो है ना वो है सुर, उसे बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: और जो है रिदम वो होता है यानी कि ये जो हमारी टेम्पो है, जैसे
0: टेम्पो
1: वैसे हार्ट बीट चलती है
0: ठीक है,
1: एक वो टेम्पो के
0: यानी
1: साथ,
0: वो
1: और ये
0: मिलाते
1: सारी
0: हैं।
1: खुदादाद चीज़ है, ये
0: अच्छा
1: अल्लाह पाक की तरफ से है। इतने इतने अच्छे गाने वाले हैं जिनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है,
0: लेकिन वो
1: लेकिन
0: सामने नहीं आते हैं।
1: वो रिदम से महरूम है,
0: मैं रूम, अच्छा
1: उनकी ये फीलिंग नहीं है, रिदम वाली नहीं है, वो रिदम से बाहर है। कई लोग रिदम में हैं और उनमें सुर नहीं है ना, तो ये अल्लाह पाक की अता होती है।
0: अच्छा
1: बाकी ये है कि इस मुल्क में आके आप देखना, जहाँ पे कोई बंदा उसमें जो भी कोई टैलेंट है उसको यहाँ पर उसका हौसला अफजाई
0: मतलब कर सकता है,
1: होती है।
0: यानी
1: पाकिस्तान में मैंने इतना मुश्किल वक्त गुजारा है कि देखो जी शानिया का बड़ा सैयद होकर की पे करता है, यानी ऐसी चीज़ें वो फिर इंसान को डिस्करेज करती है।
0: जी जी बिल्कुल ऐसे ही
1: तो
0: होता
1: इधर
0: है,
1: वो
0: ऐसे
1: चीज़
0: होता
1: नहीं है, इधर
0: है।
1: ये अल्लाह पाक की यही कि ये नेमतें अल्लाह पाक की
0: जी
1: देन
0: जी
1: है
0: जी
1: जिसको
0: जी
1: भी अता कर दिया।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। और अगर मैं समझता हूँ कि इसमें ये कहा भी यही जाता है कि ये कोई हराम नहीं है
1: नहीं, दो बात
0: म्यूज़िक या कलाम कोई भी, और
1: नहीं।
0: ख़ास तौर पे आरफाना हमदिया नातिया काफ़ी, इसमें तो अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, तो वो कैसे हो सकता है कि ये, हाँ जो कलाम किसी सुनने या देखने वाले को रास्ते से हटाए, उसके
1: बिल्कुल,
0: किरदार को चेंज करे, तो ज़ाहिर है वो तो ऐसे ही है ना फिर।
1: जो
0: अच्छा
1: चीज
0: जी
1: आपको यानी اصل سے دور کریں نا
0: جی.
1: وہ آپ کے لیے حرام
0: کہہ لیں یا بری
1: کھانا کھا کے آپ بول جائیں کہ نماز کا ٹائم گزر رہا ہے یا جی ہو رہا ہے.
0: ہمارا معاشرہ شاہ جی ہمارا معاشرہ بڑا ظالم ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی اس طرف آئے تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں.
1: بالکل
0: ابھی یہ میراث کوئی میراثیوں کا مطلب کہا جاتا ہے یہ میراثی ہے جی اور یہی کہتے ہیں لوگ. لیکن میراث تو کہہ لیں کہ
1: کسی کو مل جانی
0: یہ
1: بڑی
0: کسی بھی فن میں ہو جی. شاہ صاحب ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا ہے ابھی کیا آپ سنانا چاہیں گے؟
1: میں پہلے تو اپنے سننے والوں کو سب سے درخواست کروں گا. میں آج کل ایک کرب سے گزر رہا ہوں. میری والدہ صاحبہ اللہ پاک اپنے صحت دے تندرستی دے, وہ بہت کمزور ہو چکی ہیں. تو میں یعنی ان کے لیے یہ میری ایک کزن ہے وہ ان کو دیکھنے آئی ملنے آئی. میں بھی ادھر تھا پاکستان میں تو انہوں نے یہ نظم لکھ کے دی.
0: اچھا
1: ان کے دل کی آواز تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ چچی جی کو میں نے جب دیکھا تھا وہ میری کزن ہے تو بہت پیاری شخصیت ہے, بڑی درویش ہیں.
0: اچھا
1: تو یہ ان کے چند اشعار میں
0: بالکل آپ
1: کے سامنے رکھا ہوں. اور آپ لوگوں نے بھی پھر یہ سب نے دعا کرنی ہے
0: بالکل
1: کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے, ان کو ہمت دے, طاقت دے, ہمارے اوپر ان کا سایہ قائم
0: کرے. آمین آمین.

0: रिंग आप
1: ये, हाँ जी ये जो जो लिखी थी माशाल्लाह वो हमारी बाजी हैं,
0: अच्छा
1: हमारी वो माशाल्लाह कासम अली शाह साहब जो है उनकी खाला है और इत्तफाक की बात है कि इनकी सबसे पहली लिखी हुई नात मैंने वो सातवीं क्लास में था,
0: अच्छा
1: उस तो उधर मैंने वो पढ़ी थी मेरे मेरे मुस्तफा सल्ले अल्लाह तेरी
0: अच्छा
1: तो ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी शख्सियत
0: कासम अली शाह तो जाहिर है जी उनके साथ भी मेरा ये इंटरेक्शन बातचीत हुई थी और वो तो ज़ाहिर सही
1: बड़ी इज्जत दी
0: जी जी बिल्कुल वो मेरे ख्याल में हैं भी हमारे गुजरात के ही
1: हमारे गांव के
0: हैं बल्कि
1: ये उनकी खाला की है
0: वही मैं कह रहा हूँ तो
1: और उनकी खाला मेरी चाचे की बेटी
0: जी बिल्कुल जाहिर है तो वो क्लोज ही है ना
1: जाहिर
0: ये बड़ी लेकिन शाह साहब ये बात वाकई सही है कि आप जैसे लोग जो है ना सुर में जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया होता है तो ये एक नेमत ही होती है
1: सिर्फ इसके लिए संभाल
0: सांप करनी है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा आपसे कि प्लीज प्लीज आप अपने इस फन को इस जनाब नेमत को आप दूसरों के हवाले करें और उनको भी पता चले वो भी महजूज हों और वो भी कुछ ना कुछ हासिल करें खासतौर पर मैं अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ
1: ज़ाती तौर पर।
0: तो मज़ नाज़िन हमारा प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा एक डिफरेंस किस्म का प्रोग्राम था और हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लाया करें। तो शाह साहब को मैं इंशाल्लाह ताला गाय बगाय ज़हमत दिया करूँगा और हम ये चाहेंगे और चाहते हैं कि ये इस फन को ना हम सब के लिए पेश करते रहें गाय बगाय। शाह साहब आखिर में आप क्या समझते हैं कि म्यूज़िक इस वक्त पूरी दुनिया में डिफरेंट किस्म का अभी पेश हो रहा है जिसमें अगर मैं पाकिस्तान का कह लूँ या इंडिया का कह लूँ या बाकी बरसगीर में जिस तरह होता है तो इसका क्या आप समझते हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या है यानी ये चलता रहेगा इसी तरह लेकिन इसमें वो तब्दीलियाँ आती रहेंगी।
1: जफर साहब ये जैसे देख रहे हैं ना पांच उंगलियाँ एक जैसी नहीं है
0: जी जी
1: अब हर बंदे का अपना शौक जोक होता है
0: ठीक है
1: लोग क्लासिकल पसंद करते हैं ठुमरी क्लासिकल राग
0: जी जी
1: कुछ लोग गीत तक महदूद रह जाते हैं
0: ठीक है
1: कुछ लोग कंपोजर बनना चाहते हैं कंपोज भी करना चाहते हैं
0: जी
1: ये मुख्तलिफ समते हैं ना लेकिन यह है कि जो जो इंसान का शौक है उसमें वो अपना ईमानदारी से काम करते तो इंशाल्लाह लेकिन यह है कि अगर उसको हौसला अफजाई मिलती रहे
0: जी जी
1: तो फिर ये चीज़ बढ़ती है।
0: अच्छा एक और ट्रेंड चला हुआ है काफ़ी अरसे से कि वो मैं देख भी रहा हूँ कि अभी लोगों ने ना जो जितने पुराने सीनियर लोग हैं ना म्यूज़िक के साथ जो तलक रखते हैं कंपोज़र हैं चाहे वो सिंगर हैं उन्होंने ना एक ऑनलाइन सिलसिला शुरू किया हुआ है वो लोगों को ना ऑनलाइन टीच करते हैं तो इससे भी ज़ाहिर है उनका रोज़गार भी ज़ाहिर चलता होगा अच्छी एक तरीका है और दूसरा जो लोग सीखना चाहें या इससे कुछ हासिल करना चाहें तो वो भी करेंगे। तो आप क्या समझते हैं अगर आप अभी जैसे आपके पास टाइम अगर है तो उस तरीके से अगर कोई मैनेज अगर करके तो अगर आप एक वेबसाइट लॉन्च करें
1: पहली बात तो यह है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं
0: हूँ नहीं जो कुछ आपके पास है जो कुछ आपके पास है वो तो
1: कोई ऐसी बात नहीं
0: तो ये कि लोग
1: काम आ जाए तो बड़ी
0: जी जी मैं यकीन करें जब भी बात आपका जिक्र होता है ना तो रजा साहब कुछ कहना चाहेंगे आप कह लें फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं क्योंकि आप जी
2: किसी ने कभी आपसे शागिर्दी करने की ख्वाहिश की
1: टाइमिंग का इधर बड़ा फ़र्क होता है ना अब जैसे मैं काम पे था तो पता है अगर कोई चाहता भी था तो मेरे पास काम की वो उसके पास वो टाइम नहीं था जो मेरे पास था ना इस तरह तो कभी यानी इजहार तो बहुत करते हैं लेकिन ये होता है कि जो चीज़ हासिल करनी होती है ना वो बंदा को पता चल जाए जिसको प्यास लगी होती है ना
0: वो खुद
1: बाकी आता है अपना
0: बिल्कुल
1: समझ आ गया उसको वो। अब मैंने एक सदास फैमिली से होकर मैंने राग रंग 80 रागों का मैंने यानी ये किया
0: अच्छा
1: पहचान की बड़ी मुश्किल बात है ये
0: अच्छा
1: यानी सुबह का राग और शाम का और इतने ये क्लासिकल है ना
0: अच्छा
1: तो मैंने इसके लिए इतनी मुझे सख्तियाँ भी मैंने झेली बहुत बहुत वक्त लेकिन मुझे शौक था मुझ में वो तशनगी थी कि मैं ये चीज़ हासिल करूँ मुझे पता चले तो जिस तरह अगर इंसान कुछ पाना चाहे कोई हासिल करना चाहे तो वो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना नियत अच्छा, के ऊपर
0: ऐसा अच्छा किया। अच्छा चलते चलते ये भी मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि शाह साहब कोई भी कलाम आपके सामने पेश कोई कर रहा है या हो रहा है तो उसमें आपको पता चल जाता है कि ये किस राग में इसका क्या ठाठ या राग या क्या अंदाज़ा हो जाता है
1: असल में अगर बंदा यूज्ड टू रहे ना
0: अच्छा
1: तो वो तो ईजी हो जाता है
0: अच्छा
1: لیکن اگر بندہ ایک اس سے اب جیسے میری بڑی دوری ہے مجھے اچھا کچھ چیزیں میں اپنا کمپوزیشن بھی گاؤں گا مجھے خود نام نہیں یاد آ رہا ہوتا کہ اس راگ کا کیا نام
0: اچھا
1: راگ گا رہا ہوں لیکن نام بھول گیا ہوں
0: اچھا اچھا
1: وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ جب تک اگر انسان اس میں رہے نا یعنی
0: جی جی
1: تھوڑا پریکٹس چلیں
0: شاہ صاحب آخر میں کچھ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کوئی فرمانا چاہیں پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں
1: بس اللہ پاک سب پہ رحم کرے اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے ہم پاکستانی ہیں پاکستان کے لیے دعا کیا کریں ہم پہلے سب سے مسلمان ہیں ہمیں اپنے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے
0: جی جی
1: جو ہم ہمارے دین سے
0: مذہب پہ کوئی اثر ہو
1: اچھا کرنا چاہیے اچھا سوچنا چاہیے اور انشاءاللہ اللہ پاک بہت مہربانی کرے گا ہمیشہ امید رکھیں اچھے
0: تھینک یو بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب تو مزہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور امید کرتا ہوں کہ اس میں جتنی بھی باتیں ہوئیں چاہے وہ انفرادی طور پر ہوئیں اجتماعی طور پر ہوئیں اس کو آپ اچھی اگر لگیں تو آپ اس کو فالو کریں اگر ناگوار گزریں تو اس کو بے شک اگنور کر دیں تو باقی یہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھے پروگرام لائیں تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پاکستان زندہ باد اور ڈنمارک پائندہ باد

0: पर जो कुछ हुआ उसकी सूरत हाल को साफ करने के लिए कतर को ईमानदारी से कह देना चाहिए कि उन्होंने यानी खुद कतर ने इसराइल के जिम्मेदारों को बताया था कि हमला होने वाला है
1: जी।
0: और हमला ये इतला मिलने के बाद भी उन्होंने न सिर्फ इसके खिलाफ कोई इकदाम ना लिए बल्कि इस हमले को होने दिया। और ये बात जो है ये इसराइल के नेतन्याहू के गले का फंदा बन रही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइली जो हैं वो अपने मुफाद को पहले रखते हैं और खासतौर पर नेतन्याहू जो हैं वो इन चीज़ों में बड़ी महारत रखते हैं कि इस तरह के शोर शराबे से वो किस तरह बच जाए।
1: जी, जी।
0: दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इस वक्त इसराइल की जो मौजूदा सूरत हाल है दरियाए के मगरबी किनारे पर जो कुछ नई बस्तियाँ बनाई जा रही हैं और नए आबादकार दहशतगर्द जिस तरह मुकामी फलस्तीनियों को जो वहाँ सदियों से रहते चले आ रहे हैं उनके मकानों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, उनके स्कूलों को उड़ा रहे हैं, उनकी मस्जिद जो हैं वो तो ख़त्म कर रहे हैं, यादगारी जो मज़ार बनाए गए हैं कस्बे लगाए गए हैं उनको तबाह कर रहे हैं, उस पर नेतन्याहू की हुकूमत जो है वो कुछ कोई भी इकदाम नहीं दे रही और इसराइली फौजी जो हैं वो वहाँ पर महज तमाशाई खड़े उल्टा फलस्तीनियों को पकड़ रहे हैं।
1: अच्छा इस पे एक रिएक्शन आया ये इंटरनेशनल रिएक्शन आया कि
0: जी 12 मुल्कों ने
1: एग्जैक्टली जी जी
0: यूनियन के कुछ मुल्कों समेत 12 मुल्कों ने और खुद डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने भी कल कदरे सख्त जुबान में इंतबाह किया है उन यहूदी बस्तियों के बसाने के खिलाफ जो दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे में जिसमें साबिक जो ईस्ट यरूशलम है मशरिकी यरूशलम का हिस्सा उसमें तो बहुत ज़्यादा और ये सब कुछ जो है ये आलमी कानून के खिलाफ हो रहा है जी। और तो उस पर वज़ीर आज़म हमारी जो हैं मेटर फ्रेडरिक्सन इन्होंने भी उन मुल्कों के साथ मिलकर इसराइल से एहतजाज किया है, लेकिन कौन नहीं जानता कि इसराइल के खिलाफ इस तरह के एहतजाजात जो हैं वो कोई मानी नहीं रखते। अब इन्होंने ये पाबंदियाँ अब इन्होंने इसराइल के खिलाफ कुछ मुल्कों ने ये पाबंदियाँ भी लगाई हैं कि दरियाए उर्दन के मगरबी भी किनारे पर तो वेस्ट बैंक पर पैदा होने वाली चीज़ें जो हैं और वो इम्पोर्ट नहीं की जाएंगी।
1: ये जो 11-12 ममालिक हैं इसमें सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और जो यूके ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसराइली ऑक्यूपेशन जो है फलस्तीन की वो गैर कानूनी है और उनके
0: सबसे ज़्यादा जो सख्त वीर रद्दअमल सामने आया है वो बरतानिया से आया है। आपने बिल्कुल वजह कहा और इसराइल ने यही किया है कि उन्होंने मशरिकी यरूशलम में बरतानिया का जो कौंसुल जनरल था उसको बंद कर दिया और उसके अमले को कहा कि वो अपने घर जाए। इस पर बड़ी निर्देश हो रही है लेकिन सब मसला वहीं पर आता है कि उन आबादकारों को जो हर तरह से मुसल्ला है और गैर मुसल्ला फिलिस्तीनियों को वो मारते पीटते हैं और गोलियां भी चलाते हैं, कई एक जो है वो मर भी गए हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। अच्छा मसला ये है
1: जी, बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो खुद भी ज्यूइश हैं और उन्होंने मैंने उन देखा BBC पे और दूसरी मीडिया पे बहुत सख्त गुस्से में उन्होंने ये बयान दिया, लेकिन नेतन्याहू कहते हैं शख्स को कुछ नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, तो ये हर चीज़ को
0: आपने बताया था। असल मसला ये है कि इसराइल के मुतल्लिक या इसराइलियों के मुतल्लिक कोई भी बात की जाए तो ये फौरन कह देते हैं कि ये एंटीसेमिटिज्म की बात हो रही है।
1: जी बिल्कुल,
0: और इस बात को खत्म होना चाहिए कि पहले तो ये है कि हर मामले में एंटीसेमिटिज्म को ले आना ये कहाँ का इंसाफ है, जब कोई अपने हक की बात करता है। आप लोगों को मार रहे हैं, आप लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पर 80-80 साल पुराने जैतून के दरख्त जो हैं उनको आप
1: काट रहे हैं,
0: जला रहे हैं, जड़ों से उखाड़ कर आप तबाह कर रहे हैं जो कि उनका एक जरिया मुआश है।
1: अच्छा आपने सेटलर्स की बात की जिनकी अभी आप बात कर रहे हैं, तो एक खबर आई है कि वेस्ट बैंक का जो इलाका है उस वो तकरीबन 1/5-20% जो है अब वो सेटलर के कब्ज़े में है, हालांकि ये जो है वो फलस्तीनी इलाका है और उसमें वो घर बना रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं और उनकी हिफाजत कौन कर रहा है? IDF इसराइल की सरकारी फ़ौज, और वो उनको बचाती है और उनको सपोर्ट करती है कि तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, और एक अमेरिकन डेमोक्रेटिक कांग्रेस

0: मैन है रोहित खन्ना नाम है, उनका इंडियन बैकग्राउंड के हैं, वो वहाँ गए, उनको भी बड़ा तंग किया सेटलर ने, बल्कि उन पर पत्थर बरसाए, तो उन्होंने आके अमेरिका में बड़े सख्त बयान दिए और अमेरिकन हुकूमत से कहा कि इसराइल की मदद बंद कर दो। तो मैं ये चीज़ समझने से कासिर हूँ और समझना चाहता हूँ कि जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है इसराइल पे, और इसराइल बिल्कुल अकेला हुआ है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं, तो क्या उनके पास कौन सी है गिदड़ सिंगी है जो वो बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनते?
1: उनके पास कोई गिदड़ सिंगी नहीं, उनके पास एक अमली ताकत है जो उनकी सरपरस्ती करती है, और वो है अमरीका। अमरीका चाहे तो ये सारी चीज़ें एक दिन में
0: करा सकते हैं,
1: एक दिन में ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि अमरीकी मफादात जो हैं, अगर अमरीका इसराइल पर ज़्यादा जोर लगाएगा तो वो सदर ट्रंप ये भी जानते हैं कि वहाँ पर मौजूद इसराइली लाभी जो है वो उन पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आपने ये कहा कि इसराइली फौजी जो हैं, बाकायदा फौज के लोग जो हैं, वो इन दहशत गर्दों की, इन नौ आबादकारों की बाकायदा पुष्तनाही करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि उन इलाकों में जहाँ ये बस्तियाँ बसा रहे हैं, जहाँ ये अपने नए मकान तमीर कर रहे हैं और इस मौजूद फलस्तीनियों के घरों को गिराया जा रहा है, वहाँ सरकारी तौर पर बिजली जो है वो कौन फराहम कर रहा है?
0: Exactly.
1: फलस्तीनियों के लिए तो पानी तक जो है वो उसकी सप्लाई बंद कर दी जाती है, तो उनकी बिजली काट दी जाती है, उनका इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो इन लोगों के लिए ये जो आबाद का दहशतगर्द हैं, इनको ये सहूलतें क्यों और कौन मुहैया कर रहा है?
0: अभी एक नई खबर आई है कि ये जो टेररिस्ट हैं सेटलर, वो फलस्तीनी कुओं में या जहाँ से वो दरिया वगैरह उसमें वो केमिकल डाल देते हैं और उसको ख़राब करने के लिए
1: वो हर अरबा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: 1952 में एक खबर, एक रिपोर्ट आई थी कि किस तरह इन दहशतगर्द यहूदियों ने फलस्तीनियों की छोटी छोटी बस्तियों के ऊपर फजा से, हवा से बारूद फेंक कर आग लगा
0: दी,
1: और उस रिपोर्ट के मुरतब करने वाले जो थे वो डैनिश ब्रिगेडियर थे। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस वफद ने, छह रुकनी वफद ने अपनी वो रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट की दिला दी गई जिस कारखाना, जिस छापाखाना में वो छपी, वो छापाखाना जो है उसको बम से उड़ा दिया गया। और आज इस रिपोर्ट की, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सिर्फ दो कापियाँ कांग्रेस लाइब्रेरी में मौजूद है, बाकी सब तबाह कर देंगे। जहाँ इनके हाथ इतने लंबे हैं, वहाँ अफसोस ये होता है कि खुद यूरोप वाले ये मुनाफत क्यों नहीं छोड़ते और इसराइल को अच्छी तरह से उसी तरह सजा क्यों नहीं देते जिस तरह ये रूस के खिलाफ लगे हुए हैं कि उसने यूक्रेन के इलाके पर कब्जा कर रखा है।
0: very true.
1: इनको वो यूक्रेन का कब्जा तो याद आ रहा है, इनको ये क्यों नहीं याद आ रहा कि वहाँ पर नस्ल दर नस्ल सदियों से रहने वाले फिलिस्तीनियों को यूं बेघर किया जा रहा है कि उनको एक कोने में बिखेर दिया जा रहा है?
0: अच्छा, इस सेटलर के इशू में एक अच्छी खबर ये है कि काफ़ी इसराइली यहूदी लोग जो हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं और जो मजहबी भी हैं, वो कई दफ़ा जाके खड़े हो जाते हैं फलस्तीनियन और इन सेटलर टेररिस्ट के दरमियान, और फलस्तीनियन को बचाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हग द ऑलिव ट्रीज, और एक्टिविस्ट जाके, ज्यूइश एक्टिविस्ट वो दरख्तों से चिमट जाते हैं ताकि उसको काटा ना जाए। तो वो कहते हैं कि हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि हम फलस्तीनियन पे जुल्म करें, और ये हम सब जो हैं इब्राहिम के बच्चे हैं, बेटे हैं या उनकी औलाद में से हैं, तो हमें चाहिए कि हम अमन अमन से रहें। लेकिन वो इतने, उनकी उनकी बात ज़्यादा बाहर आती नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पे लोकल एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ।
1: ये आपने बिल्कुल बुझा कहा कि वो कुछ हद तक फलस्तीनियों की हमायत में खड़े होते हैं और ये भी दावा करते हैं कि फलस्तीनियों को इस तरह का सलूक का सामना नहीं करना करना चाहिए जिस तरह के उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात हमेशा याद रखें कि इसराइली कितना भी फलस्तीनियों के हक में हो, वो सबसे पहले इसराइल का हमायती है। और आपने मजहब की बात की कि वो मजहब के तौर पर नहीं है, जिनका ईमान ही ये हो कि अभी इसराइल मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से खुदा ने इनसे वादा कर रखा है उसमें तो शराय सिन्नत तक का इलाका जो है, सऊदी अरब का इलाका जो है, वो भी इसमें आता है। और आपको याद है कि नेतन्याहू ऐसे नक्शे यूनाइटेड नेशन में दिखा चुके
0: हैं
1: जिनमें ग्रेटर इसराइल का तस्वर पेश किया गया है। तो जहाँ ये सारी चीजें मौजूद हों वहाँ वो लोग जो फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाते हैं वो फलस्तीनियों के जानो माल का तहफ़ जरूर चाहते हैं, कोई शक नहीं, इसीलिए उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन वो इसराइल की वसत जो जो जमीनी वसत है, जुग्राफियाई वसत है, उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है।
0: जी बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, आपने बात की कि अमेरिका में जो है जूश लॉबी बल्कि इजरायली लॉबी बहुत स्ट्रांग है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जी ये कॉन्स्पिरेसी है, ये बात नहीं है। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है कि जो जायनिस इन्फ्लुएंस जो सोशल मीडिया पे है, तो जितनी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, एक्स, जो भी और बड़ी बड़ी कंपनी है जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सारी जो हैं वो अभी इसराइली लॉबी के जो लोग जो बड़े अमीर लोग हैं वो ख़रीदना शुरू कर दिया सारा मीडिया उन्होंने। और वहाँ पे वो अगर कोई प्रो पलस्तीनियन या एंटी इसराइल अगर कोई आप पोस्ट वगैरह लगाएंगे तो फौरन आपको नोटिस आ जाता है और पता चलता है कि ये कौन कर रहा है। तो ये इन्फ्लुएंस जो है ये एक डिक्लेयर पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है उनकी इसराइल की और उस लॉबी की।
1: जी जी बिल्कुल, आपने बजा कहा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज्यूश इन्फ्लुएंस जो है वो पूरे यूरोप के प्रिंट मीडिया पर और दूसरी तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है तो उस पर असरअंदाज होता है, इसमें तो कोई शक नहीं। आप जहाँ देखते हैं डेनमार्क में, आप तो बहुत बड़ी गहरी निगाह रखते हैं कि पुंडित जो थे रोजनामा पोलिटिकल के एडिटर, याद है आपको?
0: जी जी मुझे अच्छे चले याद है, बिल्कुल याद है।
1: उनका बेटा जो है वो इसराइल में अरबों के खिलाफ जंग में मारा गया था, ये भी याद होगा आपको। फिर उन्होंने डैनिश टेलीविजन पर बैठकर खुद ये बयान दिया हुआ है जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी करने के पर्दे में वो इसराइल के लिए जासूसी करते रहे।
0: अभी खबर आई है कि रॉसकिले यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने कहा कि जी मुझे बड़ा तंग किया जाता है, और पता चला कि वो इसराइल की फ़ौज में फलस्तीनियन को मारती रही है और अब वापस आके वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो ये बात अजीब है कि अगर कोई शख्स सीरिया जाता है यही काम करने के लिए तो उसको मुल्क बदा कर दिया जाता है, लेकिन अगर वही शख्स जो है इसराइल जाके फलस्तीनियन को मारता है तो वो बल्कि खुद आके कहता है कि मैं जो है मैंने ये किया, तो वो उसके उस पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया जाता।
1: बिल्कुल आपने बुझा कहा, और आप खुद अंदाजा लगाइए कि कई डैनिश जो हैं वो इसराइल की फौज में रिजर्व सिपाही भर्ती हैं।
0: बिल्कुल हाँ बिल्कुल है, और खुल के कहते हैं वो तो बिल्कुल कोई
1: खुल कर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि डेनमार्क के सबसे मौजूद मोतबर मजहबी घराने के जो जो हैं एक साहब वो इसराइल के वजीर हाउसिंग वजीर रहे हैं,
0: वो जो बेंट मिल्शा के जो उनके जो बच्चे जो लड़का है ना उनका वो भी चीफ रबाई है नॉर्वे में।
1: जी जो यहाँ का रबाई है
0: वो तो उसका पोता है। जी जी बिल्कुल,
1: उनका उनका छोटा भाई जो था वो हाउसिंग मिनिस्टर था, और
0: माइकल, हाँ बिल्कुल हाँ
1: जी, और उन्होंने जिस तरह नई बस्तियाँ बसाने में जो किरदार अदा किया, फलस्तीनियों को बेघर करने में जो किया, वो डेनमार्क के लिए बात से शर्म होना चाहिए।
0: मैं आपको बात बताऊं, आप ज़रूर हंसेंगे भी और गुस्सा भी आपको आएगा। मैंने जब इसराइल का विज़िट किया तो उधर मुझे माइकल मिल्शा से भी मुलाकात हुई, वो उस वक्त वजीर थे लेबर पार्टी के, तो मैंने उनसे यही सवाल किया जो भी आप कर रहे हैं, तो मुझे कहता तुम्हें नहीं पता, अभी तुम देखो इसराइल में हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो वही तुम्हें बता रहा हूँ जो हमें नज़र आता है, तो वो हमेशा जो है ना अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन में चले जाते हैं। और अभी हमारे वज़ीर खारजा, जी जी हमारे वज़ीर खारजा जो हैं लास्ट लोके, उन्होंने कहा है कि यूरोपियन ममालिक जो इसराइल की चीज़ें जो वेस्ट बैंक में पैदा होती हैं उस पर जो सेंक्शन लगा रहे हैं, हम उस पर गौर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ईयू का कमीशन हमें कहे तो हम करेंगे, अपने तौर पे हम कुछ नहीं करना चाहते। अंदाजा लगाएं किस किस्म के अजीब से वो लॉजिक वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: ये दो रुखी पॉलिसी जो है, ये इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये पार्टियाँ डेनमार्क की सियासी पार्टियाँ जो हैं ये असल में क्या मौक़िफ़ रखती हैं, और हमें किस तरह इनमें से किसी की जिसकी भी हम करना चाहते हैं मदद करनी चाहिए तो उसके वोटों में इजाफा करना चाहिए।
0: अच्छा, सदर ट्रंप साहब ने अब वो आपको याद होगा कि वो ग्रीनलैंड पे को लेना चाहते हैं, बड़ी बातें करते रहे हैं। अब उन्होंने डेडलाइन दी है, उन्होंने कहा है कि जी ग्रीनलैंड तो मैंने लेना ही लेना है और मैं 2029 से पहले जो है ना हमारा कंट्रोल हो जाएगा इसके ऊपर। तो 2029 में तो वो प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे, पता नहीं है वो क्यों ऐसी बातें करते रहते हैं। ग्रीन लाइन को वो जो है ना वो बड़ी उनकी नज़र है उसके ऊपर।
1: इसके अलावा उन्होंने कुछ और मुल्कों को भी अपने झंडे में शामिल करने की कोशिश की है, बाकायदा एक नक्शा भी शाया किया है।
0: जी जी जी,
1: क्योंकि वो कब सऊदी अरब को अपना हिस्सा बनाएंगे। ये अहमकाना पन जो है जनाब ट्रंप साहब का, ये बहुत गंभीर है और ये छोटी सी बात करके ऐसा भूंचाल पैदा कर देते हैं कि सोचने वाले देखते हैं कि दुनिया किधर जा रही है और ये अहमकाना इकदाम जो है इनका असल सबब क्या है। आपने बिल्कुल बुझा कहा सन 2029 तक क्या होगा या उस वक्त तक ये सदर बनेंगे, लेकिन ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका के मौजूदा आइन के तहत कोई सदर जो है वो दो मरतबा सदर रहने के बाद तीसरी मरतबा अपने आप को बतौर सदर उम्मीदवार पेश नहीं कर सकता। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप की ख्वाहिशात इतनी तेज हैं और इतनी सख्त हैं और वो ये चाहते हैं कि अगर इस तरह की रुकावट जो मौजूद है उसको दूर करने के लिए वो कांग्रेस से मंजूरी हासिल करें।
0: सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। जी जी,
1: सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों में से कितने जज इनके अपने
0: उनके हाथ में, बिल्कुल।
1: और फिर ऐवान नुमाइंदगान में और दूसरी जगहों पर कांग्रेस में जो लोग बैठे हुए हैं वो ये खौफ रखते हैं कि अगर ट्रंप के खिलाफ की चीज बोल दी जाएगी तो वो उनके इलाके में उनकी मकबूलियत खो देंगे, उनको वोट नहीं मिलेंगे। और अभी आपने ये एक और शोशा देखा है कि ट्रंप साहब ने ऐलान किया है कि अगर आइंदा इंतखाबात में वो दोनों ऐवानों में जीत जाते हैं तो वो हर बालग अमरीकी के लिए $5,000 जो है वो देंगे।
0: तो वो रिश्वत दे रहे हैं वो
1: इसे आप रिश्वत, अगर आप रिश्वत कहते हैं तो ये सदर ट्रंप के नुकसान निगाह से गलत है।
0: ये बहुत, वो जैसे मोदी साहब ने किया था बिहार में इलेक्शन से पहले, उन्होंने हर वोटर के 10,000 रुपए डाले तो वो वहाँ भी जीत गए।
1: बिल्कुल। अच्छा, ये दिए जाएंगे या कहाँ से जी नहीं दिए जाएंगे, लेकिन ये लोगों को लालच देकर इस तरह की हमदर्दियाँ हासिल करना और अपने स्वैच्छिक मकसद को पूरा करना ये इंतहाई गैर जमहूरी और एक मुजरमाना कदम है।
0: लेकिन वो तो बिजनेसमैन है, वो तो कहता है मैं डील करता हूँ, मैं तो हर चीज को खरीद सकता हूँ।
1: बिल्कुल, अभी वो यही डील करने के लिए तो आयरलैंड आए हुए थे दो दिन।
0: उसके जहन में यही। अच्छा, आखिरी इंटरनेशनल खबर जो है वो ट्रंप साहब की है। अब ईरान के साथ जंग में अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ है और पेंटागन जो है वो उसको छुपा रही है कि सैकड़ों अमेरिकन मिलिट्री के जो पर्सनल हैं वो उनकी डेथ हुई है ईरान वॉर में, बड़ा नुकसान हुआ है, कई उनके जहाज़ बड़े। लेकिन वो मीडिया के साथ मिलके वो मीडिया में, अमेरिकन मीडिया में उसकी खबर बिल्कुल नहीं आती, सोशल मीडिया पे आती है। ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है पार्स, वो उन्होंने सबूत पेश किए हैं, लेकिन ये अपने लोगों को नहीं बता रहे कि हमारा नुकसान वहाँ पे कितना हो रहा है।
1: बिल्कुल, आपने बिजा कहा। इसके लिए आप कुछ आवाज़ें खुद अमेरिका में उठ रही हैं।
0: जी जी जी,
1: और वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वियतनाम की तरह आखिर में आप तस्लीम करने की तरफ आ जाए कि कितना नुकसान हुआ है, आप अभी से बताएं कि कितना नुकसान हुआ है।
0: जी जी,
1: क्योंकि वहाँ पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
0: Exactly.
1: इसलिए आपने बिल्कुल बिजा कहा, कोई खबर में नहीं आ रही, मीडिया में ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा। और ईरान जो है वो अपने तौर पर दस्तावेजी सबूतों के साथ ये चीजें पेश कर रहा है कि अमेरिका को क्या क्या नुकसान हो चुके हैं। लेकिन चूंकि उसके ज़राए बड़े महदूद हैं और उसकी बातों की तस्वीर नहीं की जाती और उसे मगरबी मीडिया जो है खासतौर पर टेलीविजन वगैरह वो कोई ज्यादा अहमियत नहीं देते, इसलिए हमें मालूम नहीं होता कि असल सूरत हाल क्या है। असल सूरत हाल इनफैक्ट यही है जिसका आपने जिक्र किया कि अमेरिका को जो नुकसान हुआ है उस पर पेंटागन यानी अमरीकी वजारत दिफा जो है वो सख्त परेशान है और उसको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, क्योंकि अपने जो हैं सदर ट्रंप वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। इस बात में वो चाहते हैं कि कुछ रहे या ना रहे, अमेरिका इसराइल के ईरान के खिलाफ अपनी ये जो जंग है ये जारी
0: रखेगा। तो अभी नसर साहब, अब हम आते हैं डेनिश खबरों की तरफ। तो एक नया सर्वे आया है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, उसको पीज़ा कहते हैं, पीज़ा, वो जो है उन्होंने काफ़ी ममालिक में सर्वे किया है कि ये जो इंटरनेट वगैरह है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या बच्चों का, नौजवान बच्चों का इंटरनेट इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, और ख़ास तौर पर जो 15 साल के से कम जो स्कूल के बच्चे हैं उन पर उसका क्या असर हुआ है। तो अब ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट जो हैं, ना सिर्फ डेनमार्क बाकी और दूसरे ममालिक में भी, उनकी सोचने की सलाहियत बहुत

0: आई हुई, मसलन आईफोन है जी, एआई है जी, और इसका जो इस्तेमाल है, और हुकूमत का खुद ये मौकफ है, मुश्तरका मौकफ चारों पार्टियों का, कि इस चीज़ को कम से कम करने के लिए, जैसे बाज़ स्कूलों में, बाज़ जिमनाजियम में, बाज़ जगहों पर टेलीफोन का इस्तेमाल जो है वो दौरान स्कूल बना है।
1: वज़ीर आज़म ने भी दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि प्राइमरी स्कूलों में जो है मोबाइल टेलीफोन और टेबलेट जो है वो उसको टोटल बैन कर दिया जाएगा।
0: बिल्कुल आपने बजा कहा, और इसी तरह हुकूमत चाहती है कि इस तरह के सोशल मीडिया वगैरह को बंद किया जाए, और इसके लिए तजवीज़ है। लेकिन कल एक बड़ी खूबसूरत बात ये हुई है, खूबसूरत क्या, एक अहमकाना बात ये हुई है कि वज़ीर आज़म जहाँ तलबा के लिए इस तरह की चीज़ों पर मुआनत लगाने की बात कर रही थी, वहाँ कल उन्होंने ये कहा है कि मैं तो खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हूँ और मैं करती रहूँगी। तो अब ये उनसे ये सवाल भी किया जा रहा है कि जब आप दूसरों को बंद कर रही हैं तो अपने लिए ये सहूलत इस तरह ऐलानिया इख्तियार करने की बात की तो क्या।
1: जी जी बिल्कुल जी। अच्छा नसर साहब, एक पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खबर है, और वो डेनिश तो खबर तो है ही है, वो ये है कि अभी सिकंदर सदीक साहब जो हैं, उनका जो केस चल रहा था उनके इलेक्शन का, और वो उनका रिहाइश कहाँ थी और उन्होंने कोपेनहेगन में इलेक्शन लड़ा, अब उसका आखिरी फैसला आ गया है, और फैसला ये है कि उनका जो बिजली के बिल देखे गए और उनका जो बैंक का वो कौंटो देखा गया, उसमें कहाँ पे ये जो खर्च करते रहते हैं, तो उससे पता चला है कि सिकंदर सदीक साहब जो हैं वो कोपेनहेगन जो है वो सिर्फ इसीलिए मूव हुए थे कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, लेकिन वो ज़िंदगी अपनी जो है वो हैरले में गुजार रहे हैं जहाँ पे वो रहते हैं। तो अब वो पता चला है कि उस रिहाइश के केस की वजह से सिकंदर सदीक साहब जो हैं उनको वो कोपेनहेगन टाउन हॉल में नहीं बैठ सकते, उनकी जगह जो है हाशिम आगा नदीम के बेटे जो हैं वो जो है उनके सप्लेंट होंगे। तो अब ये इस पर जो है बिल्कुल पुंगतम हो गया है, और जब सदीक सिकंदर साहब से पूछा गया कि आप अभी जो कोर्ट में जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं इस कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ़ जो है वो फैसला हो गया है। ये तो ये एक दुख वाली बात है कि एक बहुत ठीक ठाक बोलने वाला शख्स जो है वो कमून में नहीं होगा।
0: ये देखिए, आपने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि दुख वाली बात है,
1: जी जी,
0: दुख वहाँ होता है जहाँ इंसाफ के खिलाफ, आपकी हकीकत के खिलाफ की चीज़ जो है वो रूनमा हो, फिर आप दुख का इजहार कीजिए। हमें इस बात का एहसास जरूर है कि सदीक इतनी ऊँची परवाज जो कर रहे थे वो उनको फायदेमंद साबित नहीं हुई, और उसके लिए उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया, अब दोनों तरफ का अगर मौकफ आप सुने तो कोपेनहेगन बंदिया का जो मौकफ है वो भी बहुत ठोस है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर ये फैसला हुआ है कि सिकंदर सदीक जो हैं वो सिटी काउंसिल में अपनी, ये लफ्ज में जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिटी काउंसिल,
1: जी जी बिल्कुल,
0: क्योंकि अक्सर वो अपने बयान में ये कहते हैं कि कोपेनहेगन पार्लियामेंट,
1: ये तो ये नहीं कह सकते,
0: और उनसे सवाल करने वाले पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भी यही कहते हैं कि कोपेनहेगन की पार्लियामेंट में आपने ये कहा,
1: वो नहीं पता ना उनको, वो समझते हैं कि वो पार्लियामेंट कहने से वो ज्यादा बहुत,
0: ये सिटी काउंसिल है और इसे सिटी काउंसिल के नाम ही से पुकारा जाना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: अंग्रेजी में
1: जी जी,
0: वरना तो ब्यूरो
1: है, कोपेनहेगन बल्दिया की, हाँ जी बिल्कुल,
0: कोपेनहेगन बल्दिया की ये काउंसिल है।
1: जी जी
0: खैर, लेकिन सदीक के इस तरह के जवाल पर पाकिस्तानी कम्युनिटी वाकई ही बड़ी, क्या आप उसे कहेंगे, अपने आप को निदामत महसूस कर रही है कि उनकी एक आवाज़ जो थी वो बंद की जा रही है। और आपने ये बिल्कुल बजा कहा कि सदीक से जब लोगों ने ये पूछा तो कि क्या वो इस मामले को आगे हाईकोर्ट में लेके जाएंगे या कुछ करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं करेंगे जी। और उस एक वजह उन्होंने ये भी बताई कि वहाँ चूंकि उनकी अहलिया को भी बुलाया जाएगा, सबक किया जाएगा, तो वो ये सारा तमाशा नहीं चाहते। दूसरी तरफ एक और बड़ी अजीब चीज़ रूनमा हुई है कि एक और डैनिश सियासी पार्टी जो है मेरे ख्याल में मॉडरेट हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो सदीक के खिलाफ

0: पुलिस के हाथ में जारी मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि बकौल उनके सदीक ने अपनी रिहाइश को गलत मालूमात मुहैया करके अपने आप को कोपनहेगन में मौजूद करार दिया। ये फैसला गलत था और इससे तो उनकी पार्टी के दूसरे लोग भी तो आगाह होंगे, लेकिन ये हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि सदीक ने जो किया उन्होंने अपने ख्याल के मुताबिक दुरुस्त किया। अब उनका ये दुरुस्त करना अपने लिए ये बल्दिया के नजदीक अगर गलत है तो फिर उसका फैसला भी आ गया है। दूसरी तरफ वही पार्टी जो है अब वो ये कह रही है कि जब वो मुकदमा करेंगे तो वो सिर्फ ये मुकदमा नहीं करेंगे कि इन्होंने अपनी जाए रिहाइश का गलत बताया, बल्कि वो उसके साथ ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन के दौरान इस पार्टी को जो सरकारी इमदाद दी गई थी जैसा कि तमाम पार्टियों को मिलती है और वो वापस की जाए, और अगर ये बात शुरू होती है तो इस मामले का अभी टमटम यानी अभी इख्तितामिया नहीं हुआ, अभी इसका नया आगाज होने वाला है।
1: तो इसका मकसद ये है कि उनको आराम से लीव बहने दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन तो दोबारा भी होगा अभी दो साल के बाद, वो फिर वो जो हो सकता है कामयाब हो जाए तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा।
0: बिल्कुल, ये उनके लिए खुला मौका और एक खुला चैलेंज भी है। देखिए उन्होंने 3000 के करीब मेरे ख्याल में
1: 3600 वोट मिले थे उनको, जी
0: जाती वोट जो है हासिल किए थे, और ये कुछ में मुड़ी बात नहीं है, ये दानिश बुनियादी सियासत में बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या आपने वो इन राय दहिंदगान को इस फैसले आने के बाद अपने साथ रख सकेंगे? क्या उनके राय दहिंदगान जो है वो अपनी राय को बदलने के लिए या उस पर कायम रहने के लिए सोचेंगे? और ये उनका हक है कि वो अगले इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार खड़े हों, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से होंगे या फिर वो कोई एक नई तंजीम या नई पार्टी खड़ी करेंगे, या ये आने वाला वक्त बताएगा।
1: अच्छा, आखिर में एक और ख़बर है जो कि काफ़ी तश्वीशनाक है, और वो जिस तरीके से पेश किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, उन्होंने ये कहा है कि हमने जो है कैलकुलेशन किया है कि 2010 में 2100 में डेनमार्क किस तरह होगा, कैसे जो है नज़र आएगा। अब वो ये कहते हैं, उन्होंने जो ये शुमार तादाद शुमार पेश किए उसकी रूह से डेनिश लोग, वाइट क्रिश्चियन डेनिश लोग जो डेनिश बैकग्राउंड है जिनकी, वो सिर्फ 68% होंगे। इसका मकसद ये है कि तकरीबन 32% लोग जो हैं उनका ताल्लुक डेनमार्क से नहीं होगा, और वो तीसरी दुनिया से जो वो लोग आए होंगे, और ये एक उनकी नज़र में जो है ये एक बहुत तश्वीशनाक ख़बर है। अब जिस चीज़ का मुझे जो अजीब सी लग रही है वो ये है कि आप इस ख़बर से क्या साबित करना चाहते हैं, और अगर आप यूरोपियन ममालिक पे नज़र डालें, फ्रांस इंग्लैंड जहाँ पे गैर ममालिक से लोग आए हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो गए उनको रहते हुए फ्रांस और इंग्लैंड में, तो और वहाँ भी अभी वो 10-12% पूरी टोटल पॉपुलेशन नहीं हुई, और अक्सरियत उनकी वो जो वहाँ पे पैदा हुए हैं, लेकिन डेनिश गवर्नमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री वो ये खबरें ये ऐसी खबर किस तरीके इस तरीके से क्यों पेश की जा रही है?
0: देखिए अपने आबादी में डेनिश नस्ल आबादी में राजनीतियों की यानी जैसा आपने कहा तीसरी दुनिया के ममालिक जो है गैर डेनिश जो हैं उनकी तादाद पर नज़र रखना ये एक अच्छी बात है, तो ये कोई ज़्यादा तश्वीशनाक बात नहीं। लेकिन और यही चीज़ जो है ये साबित करती है कि डेनमार्क जो है वो एक कसीदुल सकाफ़ती कसीदुल कुमैयती मुल्क है, और इस चीज़ को डेनमार्क को बाशे फ़ख्र समझना चाहिए अपने लिए कि यहाँ कितनी कौमें जो है वो आबाद है, और इसे ये खतरा बनाकर सामने नहीं जाना चाहिए कि फलां साल के बाद हम इतने कम हो जाएंगे कि हम अकलियत में आ जाएंगे।
1: जी,
0: ये चीज़ जो है ये तसर पैदा करना दरअसल इससे यहाँ रहने वाले गैर मुल्की जो हैं और ख़ासतौर पर मुसलमान जो हैं उनके खिलाफ डेनिश लोगों को मुतहर्रक करने या सोच विचार करने का मौका।
2: एक संग नए रंग नए रंग हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2834, ईमेल रेडियो स्नैगले हम वतन